अच्छा गौरव, कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है। हम लोग एक इनोवा जाएगा, तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है, ये वाला ऐसा वाला। हम लोग का पूरा टीम, आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाएगा।